0: are watching India Today.
1: It's a five-story building that's collapsed in South Delhi today, and the tragedy has triggered a massive emergency response amid fears that multiple individuals remain trapped under the debris. Here is a report on the same. Take a look.
2: A five-story building has collapsed in Delhi's Mehrauli area, claiming multiple lives and leaving dozens injured. India Today has accessed footage of the tragedy caught on camera by eyewitnesses. The collapse of the ill-fated building, which housed a coaching center, a mess, a paying guest house and residential accommodation, has triggered a massive emergency response. Rescue teams have moved in to extricate trapped people. The Delhi Fire Service led the initial response and later scaled up operations. Emergency teams continued intensive search operations through the night and extricated over 10 people from the rubble.
3: Building kate illegal thi. Uspe pehle 4 manzil thi, uspe 3 manzil aur chadhaye. Building ne apna pressure khoya. Building gir gayi. Jaise building giri hai, jis pass wali building mein coaching chal rahi thi, us coaching ke upar aake giri. Kuch bache wahan injured hue.
4: Ab NCT ko bulao, unse poocho yahan pe kitni buildings hai jo illegal hai. Aur sari building hi girao, kyunki ab to nahi manna na yaar, kitni baar marenge. Aap mar jaoge, ye bhi mar jayenge, sab mar jayenge, fir rahega kaun NCT?
5: The authorities are engaged into the rescue operations to find out as many as people alive possible, because all, you know, the initial for 24 hours are always a golden period, but there could be possibility to recover people alive from the debris, since it's a five-story building, not everything collapsing in a way. And but at the same time, of course, the people who are concerned for their loved ones, that we see the people are also gathering here in a number. Police is also maintaining law and order, but there is anger since the people who have lost their loved ones, and since there is no information about their whereabouts.
2: Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the site to oversee rescue operations. The Chief Minister has assured that strict action will be taken against unauthorized constructions. Consequently, cops have swung into action to nab the owner of the collapsed building, Karamveer Jeldar. In addition to registering an FIR, Delhi police have conducted a raid to arrest Karamveer. Beyond the tragedy lies a damning question. How many more such buildings are silently waiting to collapse? The Mehrauli incident is a grim reminder that the Municipal Corporation of Delhi must urgently conduct an exhaustive ward-by-ward survey of structurally dangerous buildings across the capital. The rubble must become a reminder, not just a headline. Bureau Report, India Today.
1: A dramatic twist in the sensational Surya Chauhan murder case. Cops acted on a tip-off to nab the key accused, identified as Asad. A police team laid a trap in Ghaziabad's Khora area and kept surveillance on the suspected route. While three other accused have already been arrested in connection with the brutal killing of the 17-year-old. When police personnel attempted to intercept Asad, he allegedly opened fire on the team. In the exchange that followed, police retaliated and Asad sustained gunshot injuries. Asad later succumbed to his injuries while undergoing treatment at the hospital. Surya's distraught family has hailed the encounter of Asad and demanded that other accused must also be brought to justice. Surya was mercilessly stabbed to death on Bakri Eid following an argument with the accused. In view of the prevailing tension, a heavy police force has been deployed in Ghaziabad's Khoda.
6: आपसे मेरी पहले दिन बात हुई थी, आपने पहले दिन कहा था कि मेरी कुछ मांगे हैं प्रशासन से, जिसमें एनकाउंटर होना चाहिए असद का और बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आज एनकाउंटर हो गया, आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से?
7: हाँ, बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुँचाई इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया, और जो छह युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और छहों के सातों के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे।
6: पुलिस का कहना है पांच नामजद लोग थे, तीन को हिरासत में ले लिया है, एक का एनकाउंटर हो गया है, आगे क्या मांगे हैं आप? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी इंसाफ मिल गया है?
7: अभी इंसाफ मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, पर हमारे सब लोगों की सहायता से इंसाफ हमारा पूरा होगा।
8: सबका एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है,
7: मुझे तस्वीर असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए, क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े है, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने सात लड़कों ने मिलकर किया है, तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए।
8: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया, लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा।
9: एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता है। एनकाउंटर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में वो अपनी असफलता को छिपाना चाहते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल भेजिए, पैरोकारी करिए और उनको सजा दिलाइए। अपराध ऐसे नियंत्रित होता है, अन्यथा ऐसे पुलिस के बेलगाम होने के अलावा दूसरा कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता।
1: TMC MP Abhishek Banerjee was allegedly attacked by a mob while visiting families of post-poll violence victims in Sonarpur. Stones, eggs and chor chor slogans greeted him. The mob allegedly tore his shirt, broke his spectacles. Security personnel had to rush in to escort him out safely. A similar treatment allegedly given to Kalyan Banerjee, but as the probe in the case deepens, more skeletons continue to tumble out of the closet. Take a look at this news report.
10: BJP has ousted TMC that ruled Bengal for 15 years. But there seems to be no end to violent display of public anger. And this time, on target are TMC leadership. Eggs and stones were hurled at Abhishek Banerjee while he was in Sonarpur to meet families affected by post-poll violence on Saturday. An angry mob chanted Chor Chor and tried to attack Abhishek Banerjee, who escaped in a helmet.
11: भाई ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और दो चार लाश गिरे तभी इन लोगों को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस।
10: In another alleged mob attack, Kalyan Banerjee was hit with a sharp object while he was going to participate in a protest over the attack on Abhishek Banerjee. High drama unfolded after both attacks. TMC has accused BJP of orchestrating these attacks.
12: There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. A stone was thrown at my head. It is now 2 hours ago.
10: After the attack, when Abhishek Banerjee was rushed to the hospital, the team of doctors claimed that the Trinamool MP did not sustain any serious injury and was therefore discharged. But former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee alleged that BJP is threatening doctors, therefore Abhishek was discharged. Mamata Banerjee allegedly berated and threatened the CEO of the hospital.
13: You forced me, you mistreated, you did it, you never cheated.
10: In a viral video clip, Mamata Banerjee can purportedly be heard lashing out at Pradeep Tandon, the CEO of Bellevue Hospital, while accusing him of wrongdoing and warning him of consequences. Mamata Banerjee continues her attacks outside hospital.
13: They said, let us ask the CEO. We have to take permission. Then if any patient comes, then you have to take permission from BJP party. Hospital is not allowing the treatment because they are under threatening. They told us. And without informing us, they have released the medical bulletin because of police patient.
10: However, BJP and allies rubbished all the charges hurled by TMC and denied any involvement in this incident.
14: Doctor, agar sochega ki aapko kuch hua nahi hai, aapko sirf ek pan 40 ka zarurat hai, aapko kya hospital mein bharti kiya jayega? Aapko bed diya jayega, ha? Natak karne ke liye, rajneeti karne ke liye. Ab doctor last baat bolega na, hum to nahi bol sakte. CM saab to nahi bol sakte, Mamata Banerjee aap bhi nahi bol sakte.
15: To TMC ki jab sarkar thi, tabhi ना हिंदुओं को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनको दुर्गा पूजा करनी मिलती नहीं थी, हिंदू की पहचान बताने के बाद तुरंत उनको मार डाला भी जाता था, तो इसलिए मुझे लगता है हिंदू समाज, सनातन हिंदू धर्म में हम लोग सूद समेत सब कुछ वापस देते हैं.
10: As the political mudslinging continues, police are intensifying probe and based on the available videos, multiple arrests have been made. But as the probe deepens, a fresh twist has also surfaced. BJP sources point to arrest of TMC workers for the attack, claiming possible TMC versus TMC plot. With both sides trading charges and the streets still tense, are more fireworks expected from Bengal? Bureau Report, India Today.
1: The CBSE mugging row continues to intensify. After fiercely denying a crisis, the CBSE has now acknowledged concerns. The Central Board of Secondary Education has confirmed that its mugging system has lapses. CBSE stated that it is actively monitoring reported vulnerabilities linked to its service provider's marking portal and has begun shifting systems toward more secure infrastructure under the expert supervision. The developments follow claims raised by a student researcher and ethical hackers who allege potential weaknesses in the handling of sensitive exam data. However, ethical hacker Nisarga Adhikari, who told India Today that there's a technical flaw that may have allowed access to answer sheets. He says such vulnerabilities were flagged earlier, arguing that regular audits could have prevented such lapses, even as the CBSE has acknowledged concerns around the system security. Controversy has quickly escalated into a political flashpoint, with Leader of Opposition Rahul Gandhi launching a sharp attack on the government, accusing it of dismissing the student concerns and escalating tensions instead of addressing the issue. Meanwhile, students involved in the interaction with Rahul Gandhi stated that they were called deep state agents, anti-nationals and even terrorists. The Congress has also raised concerns over alleged irregularities in the tendering process and is demanding stronger safeguards for handling sensitive student data, calling for accountability at the highest of levels. Now, my colleague Anmol Bali has spoken exclusively to ethical hacker Nisarga Adhikari, one of the individuals who first flagged serious security concerns in the CBSE marking portal, that is. In the conversation, he details the nature of the alleged vulnerabilities. Listen in.
16: सीबीएसई ओएसएम पोर्टल को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. निसर्ग अधिकारी है जो 19 वर्षीय एथिकल साइबर हैकर हैं. उन्होंने पहले भी पोर्टल की कमजोरियों को लेकर बहुत सी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की, जिसको लेकर सीबीएसई की तरफ से भी जवाब आए. पर आज देखा गया कि जब उन्होंने AWS डाटा को लेकर एक पोस्ट साझा की, उन्होंने बताया कि कैसे ही लाखों बच्चों की जो आंसर शीट्स हैं उसका डेटा जो है वो टेम्पर किया जा सकता है, वो डेटा बाहर आ सकता है। उसके बाद देखा गया कि सीबीएसई ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट की, उनका धन्यवाद भी किया, और सीबीएसई ने भी कहा कि आईआईटी और भी जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काम कर इस साइबर सिक्योरिटी को और कड़ा किया जा रहा है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद निसर्ग अधिकारी जुड़ चुके हैं। तो निसर्ग, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले तो आप बताएं, जो आज आपने एक ट्वीट की है जो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या है सारा मामला, क्या है डाटा ब्रीच?
17: आज सुबह मैंने सीबीएसई, जहाँ पे सीबीएसई पेपर स्टोर करते हैं, उनका जो बकेट था उसका लिंक मुझे मिला। फिर मैंने ऑडिट किया ठीक से और मुझे मिला कि वो जो ओपन है, एनीवन विद अ लाइक इंटरनेट कनेक्शन कैन सी लाइक कहा उनके पेपर्स में क्या है, कहाँ स्टोर हो रहे पेपर, कितने पेपर्स है, कौन से कॉलेजेस के पेपर्स है एंड ऑल, देख भी सकते, ब्राउज भी कर सकते पीडीएफ जो भी है। एंड मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने डेटा सेंसर कर दिया और मैं ट्विटर पर डाल दिया सीबीएसई को टैग करके, क्योंकि मैं अगर रिपोर्ट भेजी ये लोग फिक्स नहीं करेंगे। सो उसके बाद ये वायरल हो गया, सीबीएसई ने बोला हाँ हैक हुआ है।
16: तो कहाँ आपको लगता है निसर्ग कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां है, क्या कारण लगता है आपको?
17: उन्होंने ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए मैंने वो लिख दिया ट्वीट।
16: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके कमजोर पोर्टल की
17: बोला था, मैंने बोला था।
16: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर, जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
17: आज मेल नहीं किया, बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है।
16: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट टाइम तो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था।
17: हाँ, बट आज मुझे और मिल गया, और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था। उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो। वो भी लाइक मैंने उनको बोला था एंड फ्रॉड भी हैक हुआ था। अब एक्नोलेज करे मुझे अच्छा लग रहा है ठीक से, देर फाइनली अगर बोल रहे हैक हुआ था।
16: तो निसर्ग, आपसे कोई सीबीएसई को, सीबीएसई से आपको कोई मेल आया हो, कॉल आई हो आपसे बातचीत करने?

0: बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। कल जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ, हमने अपने पार्टी की तरफ से और सारे लीडरों ने दिखाया कि कैसे बीजेपी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हाथ में अंडा लिए हुए इंतजार कर रही है और बोली कि हम इससे अभिषेक बैनर्जी का स्वागत करेंगे। ये बीजेपी की मंडल अध्यक्ष थी, कोई आम जनता नहीं थी जिसको प्रेस दिखा रही कि आम जनता ने ऐसा किया। जिसने पत्थर उठा के मारा वो बीजेपी का सदस्य है, लेकिन खेद इस बात का है कि बताया जा रहा है कि पब्लिक मार रही है।
1: आई कंडेम ऑल दिस एंड आई एम श्योर दैट वी शैल गो टू द गवर्नर, वी शैल गो टू द हाई कोर्ट, बट आवर फाइट अगेंस्ट बीजेपी रफियंस विल कंटिन्यू। एक तरफ ऊपर में बोल रहे हैं कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं, हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी।

जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो दो लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे, और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और दो चार लाश गिरे तभी तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस।

0: about growing fissures within the party, raising the question, is Mamata Banerjee losing her grip on the TMC and is the party feeling the pressure after a bruising electoral battle? Adding to the discomfort, senior TMC leader Kunal Ghosh publicly questioned the silence of some of his own party members, saying that leaders from other parties are protesting the attacks, while several TMC MPs and MLAs remain silent.
1: अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई थी उनके कालीघाट स्थित आवास पर, और ये उनका कालीघाट स्थित आवास है जहां पर बैठक बुलाई गई थी। सारे विधायकों को बुलाया गया था लेकिन ज्यादातर विधायक आज अनुपस्थित रहे। लगभग 20 विधायक ही इस मीटिंग में आ पाए, ऐसे में मीटिंग ही नहीं हो पाई, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जो टीएमसी की ओर से कहा गया कि ज्यादातर विधायक जो प्रोटेस्ट चल रहा है विभिन्न जिलों में वहां पर हैं, इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता निकल नहीं पा रहे हैं, उनको निकालने के लिए, उनकी मदद के लिए ज्यादातर विधायक इस मीटिंग में नहीं आ पाए, इसलिए इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा है। आज अगली तारीख में सबको बुलाया जाएगा। और इस बीच एक फैसला लिया गया है कि 1 जून को समूचे पश्चिम बंगाल में ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत में है और कॉरपोरेशन वगैरह जो शहरी इलाके हैं वहां पर वार्ड स्तर पर टीएमसी की ओर से जो ये विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। ममता बनर्जी खुद 2 जून को सड़कों पर उतर रही हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और वो 2 जून को कोलकाता के रानी रासमनी रोड पर एक दिन का विरोध प्रदर्शन टीएमसी की ओर से आयोजित किया गया है, उसमें वो शामिल होंगी।
2: अभिषेक बनर्जी ऑनरेबल एमपी, उसके ऊपर सोनारपुर में जो हमला हुआ था उसके बाद बहुत सारे एरिया में एमएलए लोगों को लीडरशिप में प्रोटेस्ट रैली एक्सेट्रा प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स हो रही थी। उसके बाद आज कल्याण बनर्जी हमारा सीनियर एमपी, उसके ऊपर भी हमला हुआ। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बीइंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरेसमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है।
0: Let's now take a look at the crackdown on the TMC syndicate since the time the BJP has come in power in the state of West Bengal. So on May 25th, TMC councillors' illegally built office in Uttarpara was bulldozed. So that was one of the actions that is a part of the crackdown on the TMC legal syndicate. On May 24th, Kolkata Municipal Corporation launched citywide demolition drive. On May 24th itself, TMC councillor Fayaz Ahmed Khan's structures were razed in Tiljala. Then on May 24 itself, TMC leader Raju Naskar's building was also demolished in Beleghata. On May 23rd, TMC councillor Samrat Barua was arrested in an extortion case. On May 22nd, TMC trade union leader Shankar Roth was arrested in violence case. On May 21st, TMC councillor Partha Verma was arrested in Damdam municipality case. And there's another case on May 20th, TMC councillor Ranjan Podar was arrested by Bidhan Nagar police. So that is the action that has been taken against the TMC syndicate under the BJP government in West Bengal. My colleague Anupam Mishra also continues to stay with us. Anupam, after these attacks on Abhishek Banerjee and Kalyan Banerjee, one thing which is also clear and which is now out in the open is the kind of the rift between the TMC leaders internally, and which has also been highlighted by Kunal Ghosh questioning the silence of many leaders.
3: Well, you know, when Abhishek Banerjee was attacked in Sonarpur, he was seen with very less TMC workers with him. And when he was taken to Apollo Hospital for the admission, and then again in Bellevue Hospital, TMC leaders and workers were absolutely absent from that site. Out of 80 MLAs, only 2 to 3 MLAs were present when Abhishek Banerjee was taken to Apollo Hospital, then into Bellevue Hospital. So it shows that people in the TMC, especially the 80 MLAs who were there, and yesterday also 60 MLAs were absent from the meeting. So this shows a wide rift in TMC, and a lot of TMC MLAs are not aligning with the party line. and they are not showing up. They are not participating in the party meetings. They are not

0: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा।
1: एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता है। एनकाउंटर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में वो अपनी असफलता को छिपाना चाहते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल भेजिए, पैरोकारी करिए और उनको सजा दिलाइए। अपराध ऐसे नियंत्रित होता है, अन्यथा ऐसे पुलिस के बेलगाम होने के अलावा दूसरा कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: जो सिक्योरिटी के लोग भी है जो दो लोग मेरे साथ तैनात है तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं. ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और दो चार लाश गिरे तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा. तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस.

0: जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो दो लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे, और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और दो चार लाश गिरे तभी तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: K. Annamalai could be launching a new political party. This after fan posters emerged across Coimbatore last week, leading to these rumours. Adding more to this was Congress MP Karthi Chidambaram's rather cryptic tweet on the same. Well, even as BJP held its state central committee meeting in Coimbatore last week, Annamalai skipped the meeting as he was abroad. His supporters, however, initiated Annamalai Ambu Kutam campaign with posters with Annamalai's face and quote saying, "Fearless minds gave no limits," emerged across Coimbatore. Fans created posters on the set that new appointments were underway. Sources now say that amid rumours, Annamalai will be in Delhi and meet BJP President Nitin Naveen. Following these developments, Congress MP Karthi Chidambaram put out a cryptic tweet on Sunday. His tweet mentioned another political party in Tamil Nadu is in the offing with churn accelerating and that there was an interesting logic to the proposed name.
1: I don't have any idea on this because I'm not following it yet. See, anyone in Tamil Nadu, anyone can form the party. It is their own decision, but I don't have any idea on it.
0: The CBSE marking controversy continues to intensify. After fiercely denying a crisis, the CBSE has now acknowledged concerns. This controversy has quickly escalated into a political flashpoint. Leader of the opposition, Rahul Gandhi, launched a sharp attack on the Prime Minister, accusing the Prime Minister of discussing mangoes but not the future of 18.5 lakh students. He's also cited students' claims of malpractice, including answer sheets allegedly scanned using mobile phones, calling it a serious lapse in accountability and governance. Congress also raised concerns of alleged irregularities in tendering processes and demanded stronger safeguards for handling sensitive student data. Has called for Union Minister Pradhan's resignation as well. Earlier, Rahul Gandhi also interacted with Vedant and other students who flagged answer sheet evaluation lapses. Students involved in interaction with Rahul Gandhi said they were called deep state agents, anti-nationals and even terrorists. BJP has hit back strongly at Rahul Gandhi, accusing him of politicizing the concerns of students and indulging in what the BJP said was grandstanding, A, to deflect from his own track record. CBSE, meanwhile, said it is actively monitoring reported vulnerabilities linked to its service provider's marking portal and has begun shifting systems towards more secure infrastructure. My colleague Anmol Bali has spoken exclusively to ethical hacker Nisarga Adhikari, one of the individuals who had first flagged serious security concerns in the CBSE marking portal. In that conversation, he details the nature of the alleged vulnerabilities.
2: सीबीएसई ओएसएम पोर्टल को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। निसर्ग अधिकारी है जो 19 वर्षीय एथिकल साइबर हैकर है, उन्होंने पहले भी पोर्टल की कमजोरियों को लेकर बहुत सी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की, जिसको लेकर सीबीएसई की तरफ से भी जवाब आए। पर आज देखा गया कि जब उन्होंने AWS डाटा को लेकर एक पोस्ट साझा की, उन्होंने बताया कि कैसे ही लाखों बच्चों की जो आंसर शीट्स हैं उसका डेटा जो है वो टेम्पर किया जा सकता है, वो डेटा बाहर आ सकता है। उसके बाद देखा गया कि सीबीएसई ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट की, उनका धन्यवाद भी किया और सीबीएसई ने भी कहा कि आईआईटी और भी जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काम करकर इस साइबर सिक्योरिटी को और कड़ा किया जा रहा है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद निसर्ग अधिकारी जुड़ चुके हैं। तो निसर्ग, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले तो आप बताएं, जो आज आपने एक ट्वीट की है जो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या है सारा मामला, क्या है डाटा ब्रीच?
3: आज सुबह मैंने सीबीएसई, जहाँ पे सीबीएसई पेपर स्टोर करते हैं, उनका जो बकेट था उसका लिंक मुझे मिला। फिर मैंने ऑडिट किया ठीक से और मुझे मिला कि वो जो ओपन है, एनीवन विद अ लाइक इंटरनेट कनेक्शन कैन सी लाइक कहा उनके पेपर्स में क्या है, कहाँ स्टोर हो रहे पेपर, कितने पेपर्स है, कौन से कॉलेजेस के पेपर्स है एंड ऑल, देख भी सकते, ब्राउज भी कर सकते PDFs जो भी है। एंड मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने डेटा सेंसर कर दिया और मैं ट्विटर पर डाल दिया सीबीएसई को टैग करके, क्योंकि मैं अगर रिपोर्ट भेजी ये लोग फिक्स नहीं करेंगे। सो उसके बाद ये वायरल हो गया, सीबीएसई ने बोला हाँ हैक हुआ है।
2: तो कहाँ आपको लगता है निसर्ग कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां, क्या कारण लगता है?
3: उन्होंने ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए। मैंने वो लिख दिया।

0: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके
1: हाँ
0: कमजोर पोर्टल की
1: बोला
0: जो
1: था, मैंने
0: कम,
1: बोला था।
0: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर, जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
1: आज मेल नहीं किया, बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है ना।
0: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट टाइम तो उन्होंने वो डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था।
1: हाँ, बट आज मुझे और मिल गया, और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था। उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो। वो भी लाइक मैंने उनको बोला था, एंड फ्रॉड भी हैक हुआ था। अब एक्नोलेज करो, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक से देर फाइनली अगर बोल रहे हैक हुआ था।
0: तो निशा, आपसे कोई सीबीएसई को, सीबीएसई से आपको कोई मेल आया हो, कॉल आई हो, आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो उन्होंने
1: नहीं
0: सीबीएसई?
1: किया, नहीं किया। All right, let's tell you a little about what the allegations and what the charges of the opposition are. This is Rahul Gandhi's charge versus what the CBSE's counter really is. So what's his charge? Let's tell you about that first. Massive tampering in CBSE results, controversial history was ignored. That's what Gandhi has said. Of course, the CBSE has also responded to what was said, that this was misleading and factually incorrect. That's been the rebuttal of the CBSE. Controversial history was ignored is what is being said by Rahul Gandhi. And the CBSE has responded to the same, saying that the contract process, I beg your pardon, was rather transparent. The background checks weren't done. All of this was done, says the CBSE, as per the qualification norms. This is the CBSE's rebuttal to Gandhi's allegations, given that the leader of the opposition has been raising this matter for days now. And it is celebration time for the Yadav family. Today is the birthday of Lalu Yadav, but we are telling you about how the special occasion for the family was marked. Lalu Yadav seen in these pictures with his daughter in Singapore. The father-daughter duo have celebrated by cutting a birthday cake together. Back home, the festive mood has hit Patna. Huge posters featuring Rohini and Lalu Yadav have been put up right outside the state RGD office. Take a look at these pictures. Going to be slipping into a short commercial break here.

ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दन तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है, देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल 50 साल मिनिमम पीछे चला गया। तो ये जनरोष है।

0: जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो दो लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और दो चार लाश गिरे तभी तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffeehouse favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffeehouse or ask your device to play Coffeehouse on TuneIn.
3: Oh, sorry.
4: मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा आओ भैया आओ भैया बाबा चश्मा लगाएं हर जगह भगवान नजर आए जब भी बिजली जाए मिनी बुलडोजर पंखा चलाएं आए आए आए गर्मी का इलाज पाए पाए पाए दस रुपए निकालो दस रुपए पी लो गन्ने का रस मिलेगी ठंडक नहीं रहोगे बेबस आयो भाई साहब आइसक्रीम ठंडी आइसक्रीम लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में बड़ा फ्लेवर है
5: हम्मा हम्मा हम्मा रंबा रंबा रंबा भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा
6: वोकल बनिया वोकल गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल गमछा घुमाओ गर्मी भगाओ
7: को पावर्ड बाय शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा वेयर आर यू

0: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा।
1: एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता है। एनकाउंटर गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में वो अपनी असफलता को छिपाना चाहते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल भेजिए, पैरोकारी करिए और उनको सजा दिलाइए। अपराध ऐसे नियंत्रित होता है, अन्यथा ऐसे पुलिस के बेलगाम होने के अलावा दूसरा कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा आओ भैया आओ भैया बाबा चश्मा लगाएं हर जगह भगवान नजर आए जब भी बिजली जाए मिनी बुलडोजर पंखा चलाएं आए आए आए गर्मी का इलाज पाए पाए पाए
4: दस रुपए निकालो दस रुपए आइसक्रीम ठंडी आइसक्रीम लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में बड़ा फ्लेवर है
5: हम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा रम्बा भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा
6: मती मती मती मती मती
5: ठंडा कुल्फी खाइए और गम भूल जाइए
7: वोकल बनिए वोकल गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल गमछा घुमाओ गर्मी भगाओ
8: को प्रेजेंटेड बाय सीपी प्लस ऊपर वाला सब देख रहा है को पावर्ड बाय जिंदल स्टेनलेस
9: को पावर्ड बाय
8: एनईसीसी संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे

0: चार खेपलियावत भैया दूरी से वहाँ डोबन के वहाँ लग जाते 6-7 साल हुए पानी नहीं हुआ नहीं हम कब नहीं आया तो क्या करे रोज की 3 चक्कर आई
1: बच्चों से काम कहती होंगी बेड़ा भर ले
2: उनकी पढ़ाई नुकसान होती है पानी भरते हैं जो इतना कौन पूछता है भरने पड़ता है ड्राम ड्राम रख के
3: बैंक अकाउंट कोनो दिन जल्दी आ जाते कोनो दिन इतना कुटेम आवत है तो कौन पूरा दिन ही लग जावे ऐसा हो जाता है ना तो पूरा दिन वही खिलाना ताके बैठे रात है 12 महीना हैरानी कैसे ठंडी होवे अच्छा गर्मी होवे पानी की सब दिन हम हैरानी है
4: विलेजर्स से समटाइम्स दे गेट पाइप्ड वाटर सप्लाई सम हाउसेस हैव स्मॉल हैंड पंप्स व्हिच आर लोकली कॉल्ड किचु हैंड पंप्स
5: व्हेन कब्राई लोकेलिटी ऑफ महोबा वाज सफरिंग बैड विद द वाटर क्राइसिस द रेसिडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया स्टार्टेड द जुगाड़ वाला हैंड पाइप दैट मींस द मेकशिफ्ट हैंड कम इन हिंदी वी से किचु दैट्स व्हाट बीइंग यूज्ड आउट हियर नो दिस हैजंट बीन गिवन टू देम in any kind of government scheme, the so-called Sarkari Yojana, or any help from any winning or fighting candidate from any political party, but it is being bought by them by a cost of 1,000. Prashasan ki taraf se koi vyavastha aap log ke liye nahi ki gayi?
0: Nahi, nahi, koi vyavastha nahi, khud humne kharida hai.
5: Ye din mein kitna pan der chalta hai?
0: Ek ghanta aata hai bas, ek ghanta se zyada nahi aata.
5: बिजली आ रही है तो नहीं आएगा
0: हाँ बिजली आ जाएगी तो चला जाएगा
4: अ वाटर टैंक वॉज बिल्ट यूजिंग लोकल MLA's funds अ फ्यू इयर्स अगो बट इट इज स्टिल नॉट फंक्शनल
6: कबराई कस्बे में प्रकाश में है कि इंदिरा नगर जवाहर नगर और राजेंद्र नगर में पानी सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है किंतु नगर पंचायत द्वारा यो साहब द्वारा निरंतर टैंकरों के माध्यम से जो है कस्बे वासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है स्थायी समाधान के लिए स्थायी टंकी निर्माणाधीन है बहुत शीघ्र उसको जो है तैयार करा करके और पानी की समस्या का समाधान कराया जाए
4: द अथॉरिटीज अश्योर कबराई विल गेट रेगुलर वाटर सप्लाई सून विलेजर्स हाउएवर आर स्केप्टिकल दे विल बी कन्विंस्ड ओनली व्हेन दे गेट द प्रॉमिस्ड वाटर विद समर्थ श्रीवास्तव ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
7: With that report, viewers, it's a wrap at News Today at 9 p.m. We'll see you tomorrow. Thank you for watching. Up next is my colleague, Maria. But before we leave you with this report and these visuals, as elated supporters of RCB poured into the streets on Sunday night to celebrate the team's victory in the IPL, a series of videos circulated online showing fans creating ruckus on the roads of Hyderabad and Andhra Pradesh. These visuals clearly show celebrations going out of hand. All right, we leave you with these visuals. Up next, my colleague Maria Titsa.

0: यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दन तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है, देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल 50 साल मिनिमम पीछे चला गया। तो ये जनरोष है।

0: पहले चाय 10 रुपए की बिकती थी, अब 20 की करनी पड़ेगी। डबल सिलेंडर कर दिया। मट्टी हुआ रेट पहले तो 5 रुपए की मट्टी थी, अब 10 रुपए की मट्टी करनी पड़ेगी। पहले बालू चाय 5 रुपए की थी, अब मैं हर चीज का रेट में समोसा 20 रुपए का एक प्लेट करना पड़ेगा। सारी चीजों में तो महंगाई माता तार करनी पड़ गई है।
1: बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं, इसका इफेक्ट प्राइस पे आएगा, जनता पे इसका बर्डन पड़ेगा। रेट बढ़ाने पड़ेंगे मिठाइयों के, बिल्कुल बढ़ाने पड़ेंगे जी।
2: कितना बढ़ा अगर मत पाने को, अभी तक कितनी बार बढ़ चुका?
1: ये तीस चौथी बार है। जनवरी में 1550 का था, आज 3126 रुपए का सिलेंडर है।

0: Welcome back, viewers. As parts of the country battle an intense summer, water has become a daily struggle for residents in Uttar Pradesh's Kabrai. Women queue up at sunrise. Children help fetch water. Villagers say they are still waiting for basic infrastructure to deliver on its promise. India Today's ground report from a town where every drop counts.
1: It's 6 in the morning. Women of Kabrai, a 6-hour drive from Lucknow, are out with their buckets. That's how their day begins, waiting for the water tankers.
2: बच्चों से काम कहती होंगी बेड़ा भर ले हो
3: जाके उनकी पढ़ाई नुकसान होती है पानी भरते हैं जो इतना कौन पूछता है भरने पड़ता है ड्राम ड्राम रख के
4: कौन कोनो दिन जल्दी आ जाते हैं कोनो दिन इतना कुटे मावत है तो कौन पूरा दिन ही लग जावे ऐसा हो जाते है ना तो पूरा दिन वही खिलाना ताक बैठे रात है बारह महीना हैरानी कैसे ठंडी हो वे अच्छा गर्मी हो वे पानी की सब दिन हम हैरानी है
1: विलेजर्स से समटाइम्स दे गेट पाइप्ड वाटर सप्लाई. Some houses have small hand pumps, which are locally called kichu hand pumps.
5: When Kabrai locality of Mahoba was suffering bad with the water crisis, the residents of this particular area started the Jugaad Wala hand pipe. That means the makeshift hand pump. In Hindi we say kichu. That's what being used out here. No, this hasn't been given to them in any kind of government scheme, the so-called Sarkari Yojana, or any help from any winning or fighting candidate from any political party, but it is being bought by them by a cost of 1,000. Prashasan ki taraf se koi vyavastha aap log ke liye nahi ki gayi?
6: Nahi, nahi, koi vyavastha nahi, khud humne kharida hai.
5: Ye din mein kitna pan der chalta hai?
6: एक घंटा आता है बस एक घंटे से ज्यादा नहीं आता
5: बिजली आ रही है तो नहीं आएगा
6: हाँ बिजली आ जाएगी तो चला जाएगा.
1: A water tank was built using local MLA's funds a few years ago, but it is still not functional.
7: कबराई कस्बे में प्रकाश में है कि इंदिरा नगर जवाहर नगर और राजेंद्र नगर में पानी सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है किंतु नगर पंचायत द्वारा यो साहब द्वारा निरंतर टैंकरों के माध्यम से जो है कस्बे वासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. स्थायी समाधान के लिए स्थायी टंकी निर्माणाधीन है बहुत शीघ्र उसको जो है तैयार करा करके और पानी की समस्या का समाधान कराया जाए.
1: द अथॉरिटीज अश्योर कबराई विल गेट रेगुलर वाटर सप्लाई सून. विलेजर्स हाउएवर आर स्केप्टिकल. दे विल बी कन्विंस्ड ओनली व्हेन दे गेट द प्रॉमिस्ड वाटर. विद समर्थ श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.
0: With that report, viewers, it's a wrap at News Today at 9 p.m. We'll see you tomorrow. Thank you for watching. Up next is my colleague, Maria. But before we leave you with this report and these visuals, as elated supporters of RCB poured into the streets on Sunday night to celebrate the team's victory in the IPL, a series of videos circulated online showing fans creating ruckus on the roads of Hyderabad and Andhra Pradesh. These visuals clearly show celebrations going out of hand. All right, we leave you with these visuals. Up next, my colleague Maria takes over.

0: Welcome back, viewers. As parts of the country battle an intense summer, water has become a daily struggle for residents in Uttar Pradesh's Kabrai. Women queue up at sunrise. Children help fetch water. Villagers say they are still waiting for basic infrastructure to deliver on its promise. India Today's ground report from a town where every drop counts.
1: It's 6 in the morning. Women of Kabrai, a 6-hour drive from Lucknow, are out with their buckets. That's how their day begins, waiting for the water tankers.
2: बच्चों से काम कहती होंगी बेड़ा भर ले हो
3: जाके उनकी पढ़ाई नुकसान होती है पानी भरते हैं जो इतना कौन पूछता है भरने पड़ता है ड्राम ड्राम रख के
4: कौन कोनो दिन जल्दी आ जाते हैं कोनो दिन इतना कुटे मावत है तो कौन पूरा दिन ही लग जावे ऐसा हो जाते है ना तो पूरा दिन वो इकला ना ताके बैठे रात है 12 महीना है रानी कैसे ठंडी होवे अच्छा गर्मी होवे पानी की सब दिन हम हैरानी है
1: विलेजर्स से समटाइम्स दे गेट पाइप्ड वाटर सप्लाई. Some houses have small hand pumps, which are locally called kichu hand pumps.
5: When Kabrai locality of Mahoba was suffering bad with the water crisis, the residents of this particular area started the Jugaad Wala hand pipe. That means the makeshift hand pump. In Hindi we say kichu. That's what being used out here. No, this hasn't been given to them in any kind of government scheme, the so-called Sarkari Yojana, or any help from any winning or fighting candidate from any political party, but it is being bought by them by a cost of 1,000. Prashasan ki taraf se koi vyavastha aap log ke liye nahi ki gayi?
6: Nahi, nahi, koi vyavastha nahi, khud humne kharida hai.
5: Ye din mein kitna pan der chalta hai?
6: Ek ghanta aata hai bas, ek ghanta se zyada nahi aata.
5: बिजली आ रही है तो नहीं आएगा
6: ना बिजली आ जाएगी तो चला जाएगा.
1: A water tank was built using local MLA's funds a few years ago, but it is still not functional.
7: कबराई कस्बे में प्रकाश में है कि इंदिरा नगर जवाहर नगर और राजेंद्र नगर में पानी सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है किंतु नगर पंचायत द्वारा यो साहब द्वारा निरंतर टैंकरों के माध्यम से जो है कस्बे वासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. स्थायी समाधान के लिए स्थायी टंकी निर्माणाधीन है बहुत शीघ्र उसको जो है तैयार करा करके और पानी की समस्या का समाधान कराया जाए.
1: द अथॉरिटीज अश्योर कबराई विल गेट रेगुलर वाटर सप्लाई सून. विलेजर्स हाउएवर आर स्केप्टिकल. दे विल बी कन्विंस्ड ओनली व्हेन दे गेट द प्रॉमिस्ड वाटर. विद समर्थ श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.
0: With that report, viewers, it's a wrap at News Today at 9 p.m. We'll see you tomorrow. Thank you for watching. Up next is my colleague, Maria. But before we leave you with this report and these visuals, as elated supporters of RCB poured into the streets on Sunday night to celebrate the team's victory in the IPL, a series of videos circulated online showing fans creating ruckus on the roads of Hyderabad and Andhra Pradesh. These visuals clearly show celebrations going out of hand. All right, we leave you with these visuals. Up next, my colleague Maria takes it.

0: Welcome back, viewers. As parts of the country battle an intense summer, water has become a daily struggle for residents in Uttar Pradesh's Gabrai. Women queue up at sunrise. Children help fetch water. Villagers say they are still waiting for basic infrastructure to deliver on its promise. India Today's ground report from the town where every drop counts.
1: It's 6 in the morning. Women of Gabrai, a 6-hour drive from Lucknow, are out with their buckets. That's how their day begins, waiting for the water tankers.
2: बच्चों से काम कहती होंगी बेड़ा भर ले आओ
3: जाके हां उनकी पढ़ाई नुकसान होती है पानी भरते हैं जो इतना कौन पूछता है भरना पड़ता है ड्राम राम रख के
4: बैंक अकाउंट कोनो दिन जल्दी आ जाते कोनो दिन इतना कोटे मावत है तो कौन पूरा दिन ही लग जावे ऐसा हो जात है ना तो पूरा दिन वो इकला न ताके बैठे रात है बारह महीना हैरानी कैसे ठंडी होवे अच्छा गर्मी होवे पानी की सब दिन हम हैरानी है
1: विलेजर्स से समटाइम्स दे गेट पाइप्ड वाटर सप्लाई. Some houses have small hand pumps, which are locally called kichu hand pumps.
5: When Gabrai locality of Mahoba was suffering bad with the water crisis, the residents of this particular area started the jugaad wala hand pipe. That means the makeshift hand pump. In Hindi we say kichu. That's what being used out here. No, this hasn't been given to them in any kind of government scheme, the so-called Sarkari Yojana, or any help from any winning or fighting candidate from any political party, but it is being bought by them by a cost of 1,000. Prashasan ki taraf se koi vyavastha aap log ke liye nahi ki gayi?
3: Nahi, nahi, koi vyavastha nahi, khud humne kharida hai.
5: Ye din mein kitna der chalta hai?
3: एक घंटा आता है बस एक घंटे से ज्यादा नहीं आता
5: बिजली आ रही है तो नहीं आएगा
3: हाँ बिजली आ जाएगी तो चला जाएगा.
1: A water tank was built using local MLA's funds a few years ago, but it is still not functional.
6: कबराई कस्बे में प्रकाश में है कि इंदिरा नगर जवाहर नगर और राजेंद्र नगर में पानी सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है किंतु नगर पंचायत द्वारा यो साहब द्वारा निरंतर टैंकरों के माध्यम से जो है कस्बे वासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. स्थायी समाधान के लिए स्थायी टंकी निर्माणाधीन है बहुत शीघ्र उसको जो है तैयार करा करके और पानी की समस्या का समाधान कराया जाए.
1: द अथॉरिटीज अश्योर कबराई विल गेट रेगुलर वाटर सप्लाई सून. विलेजर्स हाउएवर आर स्केप्टिकल. दे विल बी कन्विंस्ड ओनली व्हेन दे गेट द प्रॉमिस्ड वाटर. विद समर्थ श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.
0: With that report, viewers, it's a wrap at News Today at 9 p.m. We'll see you tomorrow. Thank you for watching. Up next is my colleague, Maria. But before we leave you with this report and these visuals, as elated supporters of RCB poured into the streets on Sunday night to celebrate the team's victory in the IPL, a series of videos circulated online showing fans creating ruckus on the roads of Hyderabad and Andhra Pradesh. These visuals clearly show celebrations going out of hand. All right, we leave you with these visuals. Up next, my colleague Maria Titsa.